बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना सा, बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।

0: तुम्हारा जो भी काम हो मुझसे काम मैं कर रहा हूँ।
1: अच्छा बेटे अब तो जाके सो जा।
0: आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हारे पास सो जाऊँ।
1: आओ आओ बेटे मैं तुम्हें सुना दूँ।